गोचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

0: शांति।
1: उठ इस नादिखु सनाज रुद्निक वीरनी रस्पीना आज वीदिखुम सज़मर्ष्ट्ये प्रेसीत्ये तुतु रस्पीनेन्ये आज मर्ष्ट्वनी वाशो रुद्निका इस नादिखुम ओम आज वीदिखुम शांति।

नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुहावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुराज्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्

मोक्षम गुरु कृपा ओम दीप ज्योति पराब्रह्म दीपम सर्वमोहनम दीपनम सजते सर्वम संध्या दीपम सर्वसत्यम ओम नमो प्रभुदीप अविनाशी आपि ब्रह्म आपि विष्णु आपो कैलाश के बाद आपो नारद आपो शारद आपो शुक्रासि आपो ध्यानी आपो ज्ञानी आपो यो प्रकाशी आपो देव सब देवी आपो सूर्य प्रकाशी आपो ब्रह्म निर्वाणी आपो चौर के वासी आपो वेदों के ज्ञाता आपो भक्तुर्वासी

से। ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवाद देवदेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।

It is with the good things, therefore it is said that God has given to this all Jivatma, to the humans. But only when this Jivatma enters into the human body, it means not that can be the holy already. That we don't know what you are thinking, what I am thinking. But in this hall where we are sitting, there are two who knows everything. आप इस कमरे में हॉल में बैठे आश्रम में तो आपको पता है आपको पता होना चाहिए कि इस हॉल के अंदर में दो ऐसे हैं जो कि आपके मन की बात आपके विचार आपके फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो दोनों ही जानते हैं आप नहीं छुपा सकते हो एक तो है भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते आप झूठ बोलोगे आप ये करोगे आप तो भगवान जानता है भगवान देखता है एक महात्मा आए और उनके पास दो भक्त आए दो डिसाइपल्स दे वॉन्ट टू बिकम द डिसाइपल ऑफ द महाराज कि गुरुजी हमें मंत्र दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे को शिष्य बनाइए तो गुरुजी ने कहा ठीक है परीक्षा कि हाँ कहिए गुरुदेव क्या परीक्षा कि दोनों एक एक कबूतर पकड़ के लेके आ जाओ गए दोनों एक कबूतर पकड़ के लेके आ गए तो गुरुजी ने कहा कि आप दोनों जाओ चक्कू लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया लेव गुरुजी क्या किसी ने देखा क्या नहीं किसी ने नहीं देखा दूसरे को कहा ले भाई तुम भी तरह जा वो गया बाथरूम में गया वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां लेकिन मैं तो देख रहा हूं तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा पट्टी बांध के गया वापस फिर आ गए वापस के गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है मेरे तो आंख के पट्टी बांध दी लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं कि उसकी भी पट्टी बांध दे गए वापस जाकर के वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख के पट्टी बांध दी कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी लेकिन भगवान तो देख रहा है भगवान की आंख मैं कैसे बांधू तब कहा तू पक्का चेला है बेटा तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे और उसको कहा ला इधर कबूतर को उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया तो उसी प्रकार दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाट यू वांट व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है और वो ये है आप खुद जानते हो तो भगवान जानता है और आप जानते हो ये दोनों ही जो है इसी हॉल के अंदर में इसी आश्रम के अंदर में जो बैठा है वो कर रहा है तो उसी प्रकार जब मनुष्य का When the human soul enters into the human body, God gives us the freedom. But then it is like that you will be bounded to the karma.

0: जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe aur phansa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत्संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग। The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, aadho sitan like this, dudh aage yu kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न who should be here first and then second and like this, then we have all to this is sat. Sat kya hai, wo sat kahan hai, wo sat kahan se aaya hai, sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai, wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट then it is said yes this is very good. So child is going front and mother is behind it, taki the children can be with mother very nice and that, and not going out then what happens is something. So sat wo satya hota hai, satya hi sat hai, satya hi satya hai, wo hi satya kahal jaya hai. तो सत्संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किसी बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट, सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत्संग। तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ। एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाथ लगाओ तब बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए वहाँ, नहीं तो वो मेरे तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल बस अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka kisko kehte hain batao? Ha. Hai? नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आ गए इन लोगों ने मुसलमान आ गए खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country there, when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India. Hamara idhar se. So that all my disciples, from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. स्वामी जी है महेश्वरानंद गए, तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ, पहले मैंने कराया, बट इस एंड आई टॉल दे बट इट डिडंट नो आई हैव डन एंड व्हाट डू यू व्हाट विल डू एंड सो माय डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब दे आर कम एंड मेड। सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है, वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इनका हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या आप करो हो, ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना था कि नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो, और मैं रहूँगे तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट। एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर and here my was staying in my house and there was one very nice person in Rupavas mein aur wo thoda padak theek nahi tha to dheere dheere chalte the but he was no very great standing very great wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao to bab ji ke wo nahi the itna छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चपड़ गया हो गया यूँ से भी जगह है। हाँ, लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मैनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस, माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड। 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास तो वो ठेठ तक। जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें। तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है। अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस। अब हम मनुष्य है, तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है, जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी है, सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य है, मेरे देश का, तब देख लेना। उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ, Hein? Qui n'est? Premanandji n'est? Ah, Premanandji quand même. Et Premanandji? Achat, Premanandji, mais c'est ce Prem. C'est ce nom est Prem. Prem qui. Bolo. Ah, तो वो इनका है प्रेमानंद जी का. प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मगा या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है. ओके, लेकिन आप देखेंगे इसको, देखेंगे कितना इसके इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष हैं, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का. तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए. और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है. प्रेम की बोलो. श्री दीप नारायण भगवान की जय.
1: श्री मारवानंद जी सद

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री माधवानंद जी की जय, गुरुदेव की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माता पिता गुरुदेव
0: की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: ओम शांति ही शांति ही शांति ही, हरिओम।
0: जय की जय।

मंगलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा ओम दिव्योति परब्रह्म दीपं सर्वमोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्या दीपं सर्वसत्यं

देवी आवो सूर्य प्रकाशी आवो ब्रह्म निर्वाणी आवो चौर के वासी आवो वेदों के ज्ञाता आवो भक्तुर्वासी।